विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सगलाय सगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय

0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 8:03 PM

0: चाहिने पियोस्?
1: दुध पुर्याउन
0: ल ल जा।
1: सुन त, दिल्लीबाट गोविन्दले आएको रे नि।
0: सुन त, यो दुध म पुर्याउँछु, त घर जा ल।
1: ल ल जा। के मान्छे हो?

0: के
1: बात करतो तु इतो दसैँ हो नचना गैना रमैना हो अपन कला संस्कृति बजैना हाम्रे उधर के जाप कलेसे हमार भैया बाबू के कासे हमरे एक अर्थ हिमाय करते मज्जा ले भोज करके जापना उधर न काजी अब चाइना।